0: betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Hi Judy, aren't you trying this? It's very nice, have more. Hi, Shepard.
2: Hi.
1: आप खा रहे कि नहीं खा रहे?
3: जी नहीं, मैं डाइटिंग कर रही हूँ।
1: डाइटिंग? लगता तो नहीं।

गुलाबी रात के साए तले इन मासूम बच्चों की रात कितनी भयानक है, कितनी काली है।

बचपन भूता हो, फिर उसकी जवानी क्या होगी, फिर उसकी जवानी क्या होगी।

जब भी देश की बात होती है ऐसे लोग मजाक में उड़ा देते हैं। ये लोग जो पीते हैं वो शराब नहीं, अनगिनत लोगों का खून है। और आज जब बच्चे भूख से पिलकते हैं तो ऐसे लोग अनाज पांव तले कुचलते हैं। ऐसे फूल इनके हाथों कुचले जाते हैं, मसले जाते हैं। लोगों के पास तन ढकने को कपड़ा नहीं और इन्हें तन ढकने का शौक नहीं। ये गुलाबी रात वाले काली रात के जिम्मेदार शबाब और शराब के नशे में चूर

मखमल के बिस्तर पर सोने वाले इतना भी नहीं सोचते कि आज इन्हीं की रक्षा के लिए इनके अपने भाई

बस बस बस बस बस बस बस पूछा है मैंने इनका पता। अरे तेरी आंखों के सितारों से, रुखसारों से, बीमारों से, बेकारों से, लोहारों से, आवारों से, गमखारों से, बंजारों से, लकड़हारों से, लकड़हारों से, लकड़हारों से।

0: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: ये दीपों का त्योहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर सोने चांदी के सिक्कों के रूप में भगवती महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। रात्रि के समय घर घर में दीपक जलाए जाते हैं। अपने मकानों को शुद्ध स्वच्छ करके खूब सजाया जाता है ताकि लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उनमें निवास करें। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी सिया जी और लक्ष्मण जी के साथ 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या लौटे तो उनका राज तिलक किया गया। इस खुशी में अयोध्या के नर नारियों ने अपने घरों में दीपक जलाए थे। वही परंपरा आज भी चली आ रही है। प्यारे भक्तों, इस पावन उत्सव के दिन महालक्ष्मी चालीसा का पाठ करने से मुंह मांगा फल मिलता है, खुशियां मिलती हैं और शुभ लाभ मिलता है। आप सबको दीपावली की बहुत

एक तेरा साथ और हमको दो जहां से प्यारा है, लता जी एंड मोहम्मद रफी साहब से गीत आप सुने फिल्म वापस से निकाला हुआ। और सुनने वालों, उजाला रेडियो, आपको मालूम है ना कि खुशी हो या गम, उजाला रेडियो है आपका साथ हरदम।

जिस्म दो है और एक जान। मोहम्मद रफी साहब की आवाज, फिल्म का नाम तेरे घर के सामने, उजाला रेडियो है ये। De leukste, ja toch? En de gezelligste, ja toch?

I have been a great admirer of this wonderful person, Mohammad Rafi. मैं हमेशा सोचता था कि भाई ये ऐसे टैलेंट बहुत रेयरली मिलता है, बहुत रिस्पेक्ट में मैं करता था उनको. रफ़ी साहब हमारे हिंदुस्तान के संगीत जगत में मेल सिंगर के हैसियत से सबसे बड़ा गाने वाला है.

साथ गमी है पैदा इसके साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टरडम से छोटी बहन कमलावती सुकरन सिंह और बेटा रायन रामपरिशन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 75 साल की आयु में फैफन जीफन तखियार औत छोटी बहन कमलावती सुकरन सिंह की बड़ी बहन रायन रामपरिशन की मौसी रोटरडम रॉसफेल्ट की रहने वाली विधवा सीलावती कल्पू सुकरन सिंह की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। सीला के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अम्स्टरडम से छोटी बहन कमलावती सुकरन सिंह और बेटा रायन रामपरिशन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 75 साल की आयु में फैफन जीफन तखियार औत छोटी बहन कमलावती सुकरन सिंह के बड़ी बहन रायन रामपरिशन के मौसी रोटरडम रॉसफेल्ट की रहने वाली विधवा सीलावती कल्पो सुकरन सिंह की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। सीला के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आने वाले इतवार यानी कि कल इतवार के रात में 6:30 बजे से 7:30 बजे तक। मोरखन जोंदखाफन फन हालफ जीफन तो हालफ अख्त मोनिटा मेमोरियम के मुर्दालय लंगनहॉर्स्ट होंदर्त रोटरडम में। और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार के दिन में 11:00 बजे दिनसदख आंस्तांद 11:00 किए जाएंगे। मोनिटा मेमोरियम क्रिमाटोरियम लंगनहॉर्स्ट होंदर्त रोटरडम में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-33-08-74-77 06-33-08-74-77। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो परिवार सुकरन सिंह के दुख में शामिल है।

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो

होई होई के कुड़िया शेर दिया दिलेर मेहंदी नेहा कक्कर एंड तानिश बागजी से आप इस गीत को सुने एंड अगला गीत लम

लैम्बोर्गिनी। हाँ, मोई गाना लैम्बोर्गिनी के तबला रीमिक्स आप सुने, मोई लगे है तो। तब एगो और पेश है लाल घगड़ा गीत का बोल, उजाला रेडियो पर।

आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन यू आर। उजाला रेडियो के साथ ये संगीत का सफर यहीं समाप्त होता है। सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।

पूरा तोर दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टेलफेन से परिवार अवतार अक्लू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 88 साल की आयु में अख्तन तख्त खियार औत श्रीमान जॉनी अवतार की सास श्रीमती शरीता अवतार अक्लू की मां, माइकल और कृष्ण के नानी अश्विता की ननिया सास अर्शानो की पर नानी, आम्स्टर्डम की रहने वाली विधवा एसलिन रामदीन अक्लू की मृत्यु आम्स्टर्डम में हो गई है, जो कि स्वर्गीय श्री रामदेव अक्लू के विधवा थी और पहले पारामारिबो खोनख्रेबसरात के निवासी। आम्स्टेलफेन से परिवार अवतार अक्लू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते शुक्रवार को 88 साल की आयु में अख्तन तख्त खियार औत श्रीमान जॉनी अवतार की सास श्रीमती शरीता अवतार अक्लू की मां, माइकल और कृष्ण के नानी अश्विता की ननिया सास अर्शानो के पर नानी, आम्स्टर्डम की रहने वाली विधवा एसलिन रामदीन अक्लू की मृत्यु आम्स्टर्डम में हो गई है, जो कि स्वर्गीय श्री रामदेव अक्लू के विधवा थी और पहले पारामारिबो खोनख्रेबसरात के निवासी। अर्थी से विदाई को आप ले सकेंगे आने वाले सोमवार रात में 7 बजे से 8 बजे तक मांदाखाफंत फन जी फनूर टॉट आठ उर उत्फार्ट सेंट्रम वेस्खार्द के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 आम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में, और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले बुध के दिन में 2:30 बजे वोन्सदाख आंस्टांद हल्फ द्री किए जाएंगे। वेस्खार्द क्रिमाटोरियम ओक मेरवेख 275 आम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार्त फुरजोरखिंग परिवार अवतार और परिवार अक्लू के दुख में शामिल है।

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Maria. Film सागर का गीता शाजी एंड एसपी बाला सुब्रमण्यम, इन दोनों की आवाजों में आप सुने उजाला रेडियो पर. एंड न्यू नोख केरा शाजी मदन मत किशोर कुमार राहुल देव बर्मन के साथ यादों की बारात. उजाला रेडियो है

0: जी मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला बहुत हो गया म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4

नाना नानी दादा दादी काका काकी मामा मामी फुआ फुफा बहन और ए भाई तो भी सुने हैं तो उजाला रेडियो।

0: उषा धीरे तेरे बिना किया जीना, किरण केदार के आवाज में आपने सुने हैं।
1: जीना तेरे बिना भी क्या जीना।
0: Jala Radio, je heet Sunwallow. En ik ben hier vandaag in GA Event Center met de live uitzending voor Jala Radio.

0: नहीं।
1: मेरे ख्याल से आप कुमार सानू को यहाँ पर नहीं लाना चाहिए, आपको शो देना चाहिए।
0: कुमार सानू 6 सितंबर को आ रहे हैं।
1: हाँ तो मालूम है कि वो आ रहे हैं, लेकिन मेरा कहना कि आप यू आर सिंगिंग जस्ट लाइक हिम, तो कुमार सानू की जरूरत नहीं है।
0: जी हाँ, मैं एक शो प्लान कर रहा हूँ आने वाले टाइम में।
1: हाँ,
0: मैं रहूँगा और उसमें और भी कुछ सिंगर्स रहेंगे।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो हम वो शो करेंगे और आई होप कि
1: आप यहाँ पर ब्राउज़र फेस्ट पर हैं, लेकिन आप नहीं आए अपने आप के लिए, लेकिन आप अपने पूरे रेस्टोरेंट के जो लोग हैं, रेस्टोरेंट पायल का है
0: जी।
1: रेस्टोरेंट पायल कहाँ पर है?
0: रेस्टोरेंट पायल है देवेंद्र पाद अलमेर,
1: अलमेर में।
0: या
1: और उसे वो जो रेस्टोरेंट जो था बीच शहर में आमस्टरडम में, वो वही नहीं रहा?
0: वो अब नहीं है, वो
1: अब आप चल गए अलमेर।
0: जी मैं अलमेर में आ गया हूँ,
1: वहाँ आराम से आप वहाँ पर हैं
0: जी।
1: रेस्टोरेंट पायल अलमेर का है, लेकिन आप यहाँ पर भी हैं, यहाँ के लोग के लिए पेट पूजा करने के लिए, भोजन के लिए आप स्वादिष्ट खाने बनाने के लिए बनाए हैं।
0: बिल्कुल, हम हैं यहाँ पर अपने स्टैंड के साथ, हमारे पास बहुत स्वादिष्ट खाना है, ऑथेंटिक इंडियन फूड,
1: ऑथेंटिक
0: लेकर बटर चिकन विद राइस, लेकर अमृतसरी छोले, चिकन बिरयानी, वेजिटेबल बिरयानी,
1: अच्छा
0: रस मलाई, गुलाब जामुन।
1: अब तो मुझे भूख लग गया।
0: आप आइए, हमारा स्टैंड आपके बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने है।
1: सामने है। लेकिन इतनी अच्छे अच्छे इंडियन खाना, ऑथेंटिक खाना है आपके पास, गर्मी गर्मी है और आराम से लोग यहाँ पर बैठ खा सकते हैं ना?
0: जी हाँ, हमारे सामने पूरा लाउंज है।
1: हाँ,
0: तो आप आइए, यहाँ पर लोग आ सकते हैं और आकर आराम से बैठ करके खा सकते हैं।
1: हाँ,
0: और आई होप कि अभी सब लोग सुन रहे होंगे, वो सब लोग यहाँ आएंगे और काफ़ी बिजी होगा।
1: हाँ,
0: हम तैयार खड़े हैं उनके लिए।
1: आप तैयार हैं, आज रहेंगे, कल रहेंगे,
0: आज भी हैं, कल
1: भी। आपको कैसे लग रहा है यहाँ पर? अभी अभी बहुत यहाँ पर बिजी हो जाएंगे और कल भी और भी बिजी होने वाले हैं
0: जी।
1: एंड यहाँ ये फूड हॉल आपको कैसा लगता है यहाँ पे?
0: फूड हॉल बहुत अच्छी जगह है, चारों तरफ स्टैंड्स लगे हुए हैं, बीच में जगह है लोगों के बैठने के लिए।
1: हाँ,
0: आराम से बैठ करके लोग अपना भोजन का आनंद ले सकते हैं।
1: हाँ,
0: और इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, और स्टेज तो खैर है ही।
1: हाँ, अच्छी है ये रेस्टोरेंट पायल के सबसे क्या कहते हैं, व्हाट इज द इसका, अगर लोग कुछ आपके पास खरीदना चाहते हैं खाने के लिए, तो आप कौन सी आप एडवाइस दे सकते हैं कि ये आप ज़रूर टेस्ट करना?
0: देखिए मेरे पास सारी
1: सब तो ठीक है।
0: हाँ, लेकिन मैं
1: एक तो चीज़ होगा जो आप कहेंगे कि ये आपको ज़रूर टेस्ट करना है,
0: बटर चिकन राइस के साथ।
1: बटर चिकन राइस के साथ
0: जी। हाँ, और जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए वेजिटेरियन बिरयानी।
1: हाँ,
0: और छोले राइस।
1: छोले राइस
0: बहुत बढ़िया है।
1: और छोले भटूरे आपके पास भी?
0: नहीं, भटूरे आज नहीं है।
1: लेकिन वो इंडिया के, वो साउथ इंडिया में होते हैं?
0: नहीं, वो नॉर्थ इंडिया से हैं।
1: नॉर्थ इंडिया के?
0: नॉर्थ इंडिया के छोले भटूरे बहुत मशहूर हैं।
1: हाँ।

अविशा, अविशा के आवाज़ में हम आपको नगमा सुनाने के बजा रहे हैं. अविशा दी वसीरो एंड दी हैव सामन मेट द क्रू फॉन सारेगामा हुन ऑप्ट्रेडन अल गहद. उस ऑप्ट्रेडन कर चुके हैं maar die zijn hier nog in de zaal met de hele crew.

अभी आपने सुने है मिस्टर ब्लैक की आवाज़ में पेश किया गया हसन वालों वहानु लाश रनार देखने में और भी गाने वाली हैं लेडी संजना डी से फन आफन तो हियर इन जिया इवेंट सेंटर ब्रासा फेस हियर इन जिया इवेंट सेंटर Het kan natuurlijk geen Lady Sanjana zijn. Lady Sanjana komt nu aan.

dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio, Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio, doe dan het op. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

थे गमी है पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार को आप सुनिए। अम्स्टरडम से छोटी बहन आशा सुकरन सिंह और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 75 साल की आयु में फैफन जीफन तक यार और स्वर्गीय पिता श्री चतुर्गुण सिंह सुकरन सिंह और स्वर्गीय माँ श्री सुखदेई सुकरन सिंह जरबंधन की बेटी अम्स्टरडम से छोटी बहन आशा सुकरन सिंह की बड़ी बहन छोटकू तो कीर चौधरी की बड़की सनी चौधरी बॉबी चौधरी और शायन चौधरी की मौसी मरियम चौधरी और नैना चौधरी के मौसी आसास एलियाना चौधरी और शान चौधरी के आजी रोटरडम रॉसफेल्ट की रहने वाली विधवा शीलावती कल्पू सुकरन सिंह की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। शीला के नाम से लोग इन्हें पहचानते और पुकारते थे। अम्स्टरडम से छोटी बहन आशा सुकरन सिंह और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 75 साल की आयु में फैफन जीफन तक यार औत स्वर्गीय पिता श्री चतुर्गुण सिंह सुकरन सिंह और स्वर्गीय माँ श्री सुखदेई सुकरन सिंह जड़बंधन की बेटी अम्स्टरडम से छोटी बहन आशा सुकरन सिंह के बड़ी बहन छोटकू तोकीर चौधरी की बड़की सनी चौधरी बॉबी चौधरी और शायन चौधरी की मौसी मरियम चौधरी और नैना चौधरी के मौसी आसास इलियाना और शान चौधरी के आजी रोटरडम रॉसफेल्ट की रहने वाली विधवा शीलावती कल्पू सुकरन सिंह की मृत्यु रोटरडम में हो गई है। शीला के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई को आप ले सकेंगे कल इतवार के रात में 6:30 बजे से 7:30 बजे तक। Zondagavond van 6:30 tot 7:30 Monita Memoriam ke Murdalay Langenhorst 100 Rotterdam mein aur arthi ke dah kriya aane wale mangalwar ke din mein 11:00 baje dinsdag 11:00 kiye jayenge crematorium Monita Memoriam Langenhorst 100 Rotterdam mein aur jankari ke liye tar ka number hai 06-33-477 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो परिवार सुकरन सिंह और परिवार कल्पू के दुख में शामिल है।

सवा सात का वक्त है मेरे प्यारे सुनने वालों, दिस इज यूआर उजाला रेडियो और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। हैतीस ब्रासा फेस्ट वीकेंड मेरे प्यारे सुनने वालों, आज शनिवार पहला दिन ब्रासा फेस्ट का जिया सेंटर, जिया इवेंट सेंटर डनहाग में, और शनिवार है मेरे प्यारे सुनने वालों 29 अगस्त लास्ट सैटरडे इस महीने अगस्त का। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप भरपूर भी एंजॉय कर रहे होंगे वीकेंड। एंड द मेंस दी नेचुरली नीट सेन गगान द ट्वेफलर्स ऑफ द मेंस दी लिवर टॉयस ब्लाइव, उन सभी के लिए हम सैटरडे नाइट फीवर नेचुरली पेश करेंगे। एंड नेचुरली उन लोगों के लिए जो काम पर है और काम के कारण नहीं जा पाएंगे, ऑफ नेचुरली पेंटेनेट बायोटलैंड, किसी भी वजह से अगर आप गए नहीं तो आप निराश ना हो, मैं हूं ना। शुभ रात्रि मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे जैसे मैंने कहा, और आप सभी प्रिय सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आदरपूर्वक है। सैटरडे नाइट फीवर पेश करेंगे आज प्रोग्राम एकदम लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रतनम से, तो तहरील से स्वागत हम करते हैं आप सभी का। एंड क्वीन इट होत फना खत लोपन वंती खा ऑन द आवर इधर के तरुक नार कोलीगा लॉयड महावीर जो इवेंट सेंटर में है, जिया इवेंट सेंटर में है, और जहां से वो लाइव प्रोग्राम भी सजा रहे हैं। एंड द ड्यूटी अलंताइज, और इसी तरह से वो भी सजाएंगे मेरे साथ ये प्रोग्राम, और जहां तक मौका मिलेगा दान करे हो नो हिरन दारवत इंटरव्यू मैं द आर्टिस्ट, तो सुनते जाइएगा और आप एंजॉय करें। वेल, हमारा कोशिश यही है कि आप ऐप करेंगे स्टूडियो में 02-363-0000, तो हम जरूर भी आज कोशिश करेंगे आपके लिए गीत चलाने का। Dus stuur een appje naar de studio 020-363-0000. Hi, hello, kehne ke liye. To main koshish karunga, zarur se zarur 8 baje ke baad, tu jaane hai toh, aap sabhi ke liye, kuch na kuch chalane ke liye. Wil je een rustige nummer, geef dat wel aan. En wil je een lekkere chalta nummer of een bite hug, laat het ook weten. और रही आपके दफ्तर की कार्रवाई मेरे प्यारे सुनने वालों, आपके हर एक कामकाज जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते विल ये फरमाइश दून, विल ये जरूरी खबरें दून, मौत की खबरें, जो भी जानकारी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त करना चाहोगे, जो भी कामकाज आप करवाना चाहोगे, सोमवार से शनिवार फमान रख तो तुम्हें सात रख सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे तक आप तार कर सकते हो स्टूडियो को, नहीं सॉरी दफ्तर को, दफ्तर को, और वो भी दफ्तर के तार पर 020-409-0807, 020-409-0807। Maar natuurlijk gaat het via de mail wat sneller. Lagataar, 24 घंटे, dan heb je niet aan tijd, ben je niet aan tijd gebonden. जब भी आपको उजाला रेडियो का जरूरत पड़े, आप मेल कर सकते हैं अपने कामकाज के लिए जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते info@ujala.nl, info@ujala.nl। एंड मेरे प्यारे सुनने वालों, चेक ऑन सोशल, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड नेचुरली यूट्यूब चैनल जो हमारा है, गेट कनेक्टेड विद उजाला रेडियो। ऑल्स जो भी हम वहां पर छापते हैं आसानी से आप उसे शेयर कर पाओगे, देख पाओगे, कमेंट्स दे पाओगे, किसी को टैग कर सकोगे, और गाने जो हम अपलोड करते हैं उजाला रेडियो के यूट्यूब चैनल पर याद रखें योग लॉयसर देल लेकर खनीत और का बोली। मेरे प्यारे सुनने वालों, नीड फॉर कार्चेस एंड दैट सॉर्ट थिंग्स हियर ना द स्टूडियो ऐप, टिकटें के लिए वह अभी आप जा सकते हैं। आज ब्रासा फेस्ट का पहला दिन एनएचएस, आज मैं देखता हूँ रात्रि में 1 बजे तक
बहुत सारे बैंड जो है आर्टिस्ट अपना कमाल दिखा चुके हैं. Maar je kan nog steeds gaan en koop je kaartje alsjeblieft via de website www.brazzafest.nl. Aan de poort kan het ook, maar het is makkelijker als je dat even met je mobiel even online doet. Check voor de links allemaal op onze social. Aur bahut sare logon ne pathaye hain mujhe photos ki bhaiya aap kahan ho. Lekker eten hier, lekker drinken hier. Lekker muziek hier. Ujala Radio, vierkbaar ek top hangama event rachaye hai. Aur hum log enjoy kar rahe hai. To main kaha aap enjoy kare. Kuch aisa hi aaj ka din nikla hai. Kuch aisa din ka planning tha ki main aaj ja nahi paunga. Lekin morgenen ben ik er wel in Den Haag. Mijn peer is een laten we een beetje gaan shaken. Het is weekend, after all. Remister Kijk Medley, de gezelligste band. Sabroso, hier aan UR. Geniet van je weekend, mijn peer is in Holland. This is UR, live vanuit Studio Rotterdam.

सबरोसो मेरे प्यारे सुनो वालों, सबरोसो आज का ओपनिंग सिलेक्शन एंड मेरे प्यारे सुनो वालों, खान सोना लॉयट महावीर इन देन हाग जिया इवेंट सेंटर, जहां लॉयट एक इंटरव्यू करेगा, तो लॉयट के इंतजार में हूं एंड देन मैं नेक्स्ट ट्रैक से वेट करूंगा, ठीक है।

या जयन महावीर मेरे प्यारे सुनने वालों, मैंने देखी जग की रीत वीत सब झूठे पड़ गए और रिमझिम बरसे ये बरखा ये पानी अतिस वर्तल ख्राइज हिर बहुमान स्टूडियो के बाहर। मेरे प्यारे सुनो, हम इस घंटे का आखिरी गीत पेश करेंगे ना खावा ना ब्रेक ब्रेक की ओर 8 बजे के हम बढ़ेंगे। तमाम सूचनाओं के बाद हैव अ लॉयट मिट द वेट होल्डर फ्रॉम देन हाग इंटरव्यू और पता नहीं और कौन उनके साथ है, और लॉयट के बाद सेवा में फिर हम हाजिर रहेंगे लेकर ये प्रोग्राम एंड ना खावा क्या के नारे एपर्स कौन है जो ऐप किए हैं और किसके लिए मुझे खूबसूरत गीत चलाना है। सो इस गीत के बाद ब्रेक मिलते हैं ब्रेक के उस पार मेरे प्यारे सुनने वालों, कहीं जाइएगा मत। अच्छा मिलते हैं वखान हियर मैट विनय कल्पू। हाँ राइट।

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं वहां पर आ गया क्योंकि लॉयड का जो इंटरव्यू है मेट द विदाउट फंडन है वो अभी नहीं हो पाएंगे। उमदत मनियर इयर्स वतानर्स मुदून एंड अल्स द विदाउटर सू फेर इज डन ब्रेक लॉयड इन। लेकिन फिलहाल हम यहां से पहला एपर्स के नाम हम गीत चलाना शुरू करेंगे और हमारे लिस्ट पर हमारे प्रिय जो है हरेंद्र जी और चित्रा जी और मार्स ब्रूक, आप दोनों के पाए हैं बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक फॉर योर सपोर्ट एंड अथवर्ट शेर हवार देर, तहे दिल से धन्यवाद आप दोनों को कहते हुए मैं ये नगमा आप दोनों के नाम करता हूँ हरेंद्र और चित्रा जी और मार्स ब्रूक।

ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सिनवालो, स्वीट मेलोडीज अमरीश पूर्णवाजी की आवाज में आप तक हमने गीत पेश किया है। घड़ी की तरफ मैं देखूं धनिया अतिस 10 मिनट बाकी है सरे 8 बजने में। एन लॉयटिस नतुलक डार इन जिया इफेंस सेंटर और उनकी इंतजार में है कि वो कब फिर अंडर आएंगे। फॉर द लास्ट के उस इंटरव्यू के बाद हम वापस लेंगे ये प्रोग्राम और दान खावे खोन सोंदर ऑन द ब्रेकिंग फेडर फॉर लॉयट टॉट 12 यूर सेलेक्टिवली एंटरटेनर। रोटरडम शहर में भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं नताशा जी और राकेश, और आप दोनों ने ऐप किए हैं डंक्यूली वेल आपके ऐप के लिए। एंजॉय योर सैटरडे नताशा जी और राकेश जी। एकदम फेर्स ऑन पेर्स हमने एक गीत को तैयार करके रखा है एंड दैट इज फ्रॉम वीरेश यंग टैलेंट एंड इज मन कान मोई सिंह। अपन लेकर बीच दो पुराने नगमाए इन्होंने फिर से गाए हैं सजाए हैं अपने ही रंग और ढंग में। तो वीरेश का ये नगमा फॉर नताशा एंड राकेश अर्थ

मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे तो बस चलते ही जाना है। या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुन वालों, वीरेश की आवाज। रिमेंबर दिस इज यू आर, आप ही का मनचाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये। सैटरडे नाइट फीवर एकदम लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रोटरडाम से जो पेश हो रहे हैं। 2 मिनट बाकी हैं सरे 8 बजने में। And wil je ook dat ik een liedje voor je draai? Een local song? Toen 020-363-0808 Parapa Awasje Aap Epkri. Hi, hello, Aapka Shubnaam. Aapka Hase Epkri. En natuurlijk, Tukunchi Mange. Ik word Chaltanagma. Ja, een soulnummer. Sowieso ga ik na de klok van 11 aangerekend in me. Dan gaan we het rustig aan doen. Alleen maar soul. मैं देखता हूं अगले नाम जो हमारी लिस्ट पर है वो है प्रभाजी एट आमस्टरडम सेंट्रम। प्रभाजी एट आमस्टरडम सेंट्रम, थैंक यू वेल आपके ऐप के लिए। बेहद खुशी है हम कि आप ही चून किए हुए हैं उजाला रेडियो पर। एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर और एंजॉय अपना वीकेंड। सागर मालिक जी का सबसे नया नगमा मैं प्रभाजी के नाम करता हूं। एतम से नाम सेंट्रम।

सागर मालिक मेरे प्यारे सिनोलो, चांदनी रात है, तू मेरे साथ है। वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स हमारे होलैंड के अंडर में सागर मालिक। मेरे प्यारे सिनोलो, खान वेर इफ तुरुख नार जी आई फैन सेंटर, जहां लॉयट आपका दिल बहलाएंगे मेथन इंटर फ्यूचर, और लॉयट के बाद हम फिर सेवा में हाजिर रहेंगे। एंड लॉयट जी का नो ओवर नेम और भैया

आंखें मिलाने वाले या ब्यूटीफुल सॉन्ग दियाना सिंह मेरे प्यारे सुनने वालों, और नाट्योलक ये गीत गाए हैं अवतार बैंड के साथ बीच त्रिनी पॉप मेरे प्यारे सुनने वालों। और अगर मौका मिला तो और भी कुछ त्रिनी पॉप आपको हम सुनाएंगे। वंदरे सर हिल फिलाइट हुकूम, बहुत कम आपको हम सुनाते हैं, जितनी ज्यादा गीत निकल आते हैं उतनी ही कम आपको हम सुना दे पा रहे हैं। वक्त का दबाव है और गाने हैं बहुत ज्यादा मेरे प्यारे सुनोसैन क्लार इव मेड लाइफ एंड सेंडिंग फनोट जी आई इवेंट सेंटर। आज आपने गया नहीं, शायद आप कल जाने वाले हैं। चेक www.brasafest.nl टिकटों के लिए। En ga morgen. Het wordt spang, gezellig. Lekker eten, drinken, genieten van Bollywood. Een beetje muziek, market, shop, toekersakke. En morgen ben ik daar ook. Morgenmiddag. Ik ben er niet te lang. Ik ben er wel morgenmiddag. Ik ga ook lekker eten. En lekker genieten van het podiumprogramma. En misschien dat ik nog samen met Lloyd live band op de radio. Dik tegen Kese. Kal kadin guzerte. Or aap anachahoge, dan kom morgen ook naar onze stand, zoek het op. En wie weet kunnen we daar even elkaar op Brasafest een brasa geven. Doe jij net toch. Want je mouka hardem toke namili. Ik ben niet iemand die overal gaat. Dus wil je een brasa? Kom dan, want ik wil je live band op de radio. Dik tegen KC. Kal kadin guzerte. Or aap anachahoge, dan kom morgen

भैया जोनी कालीचरण अयुत रोतनम आपके ऐप के लिए धन्यवाद हम कहते हैं डंकीवेल। जब भी आपको मौका मिलता है आप सपोर्ट करते हैं, चुन किए करते हैं। मैंने गीत को तैयार करके रखा है, एक चटनी मैशअप है मेरे प्यारे सुनने वालों। ये गीत जो है जोनी कालीचरण जी के लिए अयुत रोतनम, द स्वीट मेलोडीज फॉर एवर, अयुत सूरीनाम पेश करता हूँ।

मिस्टर एजे और मिस्टर प्रोमो या ब्यूटीफुल चटनी मैशअप मेरे प्यारे सुनने वालों एंड द फॉर्मेसी स्वीट मेलोडीज फॉर एवर। घड़ी की तरफ मैं देखूं तो मेरे प्यारे सुनने वालों धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं 9 बजे की ओर और 9 बजे ब्रेक होंगे, इश्तिहारे आप सुनेंगे और उसके बाद में सेवा में फिर हम हाजिर रहेंगे लेकर प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रोटरडम से जो पेश हो रहे हैं 020-363-0808 जहां पर आपको ऐप करना है और इस प्रोग्राम में सभी एपर्स के नाम एक गीत मैं पेश करता हूं। एंड ये मुझ वाल गेदुल्ड हैब अलहुवेल एक नीत सोफिल नाम मेरे ऑफ माय लिस्ट है, तो जितने नाम इस वक्त है कोशिश करूंगा अगले घंटे में सभी के लिए गीत चलाने का। मैंने एक गीत को तैयार करके रखा है मेरे प्यारे सुनने वालों, मुकेश जी का एक नगमा और मुकेश जी उनका स्पेशल प्रोग्राम हमने बीते हुए बृहस्पतिवार को बनाए हैं दिल की आवाज में, क्योंकि मुकेश जी का 50वां पुण्यतिथि थे रोन और उनके कुछ खास नगमाएं हमने पेश किया है। उनका एक पॉपुलर सॉन्ग डट भरे फिर से गाया और सजाया गया है, वो नगमा पेश करने जा रहा हूं। गाने वाले हैं लकी सिंह और फरमासी सबरोसो और ये गीत को हम नाम करेंगे आईफी जहांगीर के नाम अहित अमसदाम। थैंक यू वेल आईफी आपके ऐप के लिए।

भूला हुआ फसाना हमको न था सुनाना, अब चुप ना रहो कुछ आगे कहो कि ये फिर और क्या हुआ, फिर और क्या हुआ। विशाल क्रोल जी का आवाज में ये गीत हमने आप तक पेश किया है मेरे प्यारे सुनने वालों। एन बखले डोड फरमासी साब्रोसो सेवन मिनटें फोर द क्लॉक फन हाल्फ एल्फ सॉरी हाल्फ तीन ना बहुत स्नेल जाए ना नहीं अच्छे से सेव मिनट सात मिनट बाकी हैं सरे नौ बजने में सेव मिनट फोर द क्लॉक फन हाल्फ तीन नतुलक 020-363-0808 Wil jij ook dat ik een liedje voor jou draait? Een local song? To aapko app karna hai. 020-363-0808 Rajis uit Almere. Dankjewel Rajis ji uit Almere. Aap kep kili. Dankjewel voor het afstemmen. Mashup तैयार करके रखा है दैट इज मैं देखता हूँ द फॉर्मेसी फ्री स्टाइल सूर्यनाम का जो फ्री स्टाइल है एन फन द बेटर म्यूजिक इंफॉर्मेसी फन सूर्यनाम उनका एक मैशअप राजेश के नाम एट अलमीर दंकीवेल मेरे प्यारे सुनने वालों आप ऐप करेंगे ना मुझे अलटेट इन मैन प्रोग्राम मुझे अलटेट टेनिस मैन प्रोग्राम हम बीच गेडुल्ड है बट क्योंकि ये गाट देंगे मन हम Kwart over zeven kan die app oramar ganoa benael. Volgorde zit je daar jij, deze app I under, ooit ze hem gichelael. En vandaag hadden we een beetje interruptie vanuit Gia Event Center. Hoe hier hekaren. Heb geduld, het komt allemaal. Ik heb jullie allemaal in mijn vizier. Or sabikeli je giet hem te lengen. Veel halto Rajeske naam, je giet. Freestyle.

Freestyle, मेरे प्यारे सुनने वालों Freestyle, Beautiful Mashup here on UR, Saturday Night Fever में. अभी कुछ देर में मेरे प्यारे सुनने वालों एक जबरदस्त खावा आवा पेश करने वाले हैं मैं और वो भी एक लेजेंड जो गीत गाएंगे आप सभी के लिए. फिलहाल तो हम बढ़ चलेंगे D.O.G. मिंद फरमासी टू फेमस या सॉरी या काश भी मेरे प्यारे सुनोल और D.O.G. टुगेदर विद द टू फेमस क्रू गीत पेश करेंगे अब की बार और इसे हम नाम करेंगे भैया जॉय सुखू के नाम आई होप टू अप डंकी वेल जॉय सुखू भैयो बहुत दिनों के बाद आपने भी चून किए हुए हैं एंड यू हैव इट हील मूवी लगा था afgelopen tijd दैट वेट इक मैं यू बेन स्टर्क पावर बस यही हम कहना चाहेंगे Blijf sterk, leven gaat door, we moeten door. Doe jij niet toch? Bhaiya Joy Sukhuji, bahut bahut dhanyabad. App karne ke liye. Enjoy your Saturday. Aur aap ye geet ko bhi enjoy kare. Jo aapke naam karta hoon.

ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, काश बी और डीओजी विद टू फेमस क्रू हियर ऑन यू आर सैटरडे नाइट फीवर है मेरे प्यारे सुनने वालों, और सुनने को आए हैं कि बहुत स्पंग और खसेलग है ये आई फैन सेंटर में जहां बड़ा सा फेस्ट इस वक्त आज हो रहे हैं पहला दिन। और अगर आज आपको मौका नहीं मिला है मेरे प्यारे सुनने वालों तो आप कल भी जा सकते हैं एक हाउक मोड़ जिसमें फंदा हाउक निकल एंड नेचुरलक फिया www.brassafest.nl टिकटें आप खरीद सकते हैं दत्का नौका पोर्ट मार ऑनलाइन साल फील बेटर सेम हम तो डून एंड कम खसेलग मिच फ्रेंड्स कैनस इतनी प्रेमियों के साथ और आप एंजॉय करें अनुत म्यूजिक सालत नीत लिख सबसे टॉप बैंड्स आज आए हैं कल भी आएंगे और खाने पीने का बहुत सारे स्टैंड्स हैं यकांडा रोग लेकर शॉप तरह तरह की चीज़ है वहाँ जहाँ पर आप शॉप कर सकते हैं दिस इन एंड आउट बॉलीवुड वाइब्स उजालास ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन एंड हियर मे स्लोए टू आई अंबीचे नेचुरल द सोमर अफ नेचुरल और आप देख रहे हैं बारिश हो रहे हैं पता नहीं फिर मोइवेर आएगा या नहीं ये बारिश रहेगा या नहीं आगे चलकर किस तरह का मौसम होंगे कुछ पता नहीं लेकिन हाँ ये पता है कि अगले गीत जो है मेरे प्यारे सुनने वालों मैंने कहा एक लेजेंड को पेश करेंगे विम डमरी जी की आवाज में एक नगमा पेश करेंगे लीजिए एंड यार 80 बहन यार 90 जो रिलीज हुआ है सेल्फ देंगे 1990 मार एक कानत मिश्री में से और इसे हम नाम करेंगे जो ऐप किए हैं जॉर्ज सर्जू मिस्र uit Hoofddorp, waar ik vandaag ook was. Mijn dochter woont daar. En ik heb er zelf ook 45 jaar gewoond. Hoofddorp. George Sergio Misru, die ik naam Damri Kagaya Hwagiet pees kertahu. En dankjewel voor je appje. Waar jij geniet van je weekend.

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनो वालो, खूबसूरत पुराना नगमा सेवा में हमने पेश किया है द लेजेंड विम दमड़ी जी की आवाज। रिमेम्बर दिस इज यू आर और

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनने वालों, खूबसूरत पुराना नगमा सेवा में हमने पेश किया है द लेजेंड विम डमरी जी की आवाज। रिमेम्बर दिस इज यू आर और

die jullie heel lang hebben moeten missen. Kavi Rani. Odisha Kavi Rani, programma zonder hen. Samen met haar man zit ze in de auto. Ze gaan van Brasamela weer richting huis. और लॉयड के प्रोग्राम में भी आपने कवि को सुना है और कवि ने क्या कहा कि आने वाले बुधवार ना मैंने करो कि ना आवंद मफोर में इन मिडाग इस कवि वेर त्रुख एन ओ ओ ओ व्हाट सेइंग वो ब्लाइ वंद कवि जी वे हैव ये हेल फिल गमिस्ट ओक एक बहुत प्यार से आपके प्रोग्राम हम हमेशा सुनते हैं और आपका फैंस जो है भी आपको कितने मिस किया है To Kavi ke naam and natural look for your man. Drive safe and enjoy this song. Aapke naam karta hoon Shekhar Kumar.

Ja, blijf mooi hè, met de Pierre de Nolo. Het is al 22 jaar oud. De formatie Danza, Orieta, Shikhar Kumar. Ye dil tere liye hai, aur ye jaan bhi tere liye. इस घंटे का आखिरी गीत पेश करने जा रहा हूँ मेरे प्यारे सुनने वालों, और उसके बाद ब्रेक होंगे। ब्रेक के उस पार आप सभी से फिर जरूर से जरूर मिलेंगे हियर ऑन योर सैटरडे नाइट फीवर विद रतन फन स्टूडियो रोटरडम। द लायन देवेंद्र सिंह सेवनाथ।

खुली पलक में झूठा गुस्सा और बंद फलक में प्यार, जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल, करे तो क्या करे मेरे प्यारे सुनने वालों, कभी आर तो कभी पार। मेरे प्यारे सुनने वालों, धीरे धीरे धीरे धीरे इस ताल बहना 12 मिनट ओवर द क्लॉक 13 और ये है आप ही का मनचाहा और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो। मैं हूँ रतन राम दुलारे पांडे, सैटरडे नाइट फीवर पेश कर रहा हूँ विद द लोकल्स और आप देख रहे हैं मिला रहा हूँ कुछ पुराने और नए इसमें। Ich habe nicht so viel Namen mehr auf meiner Liste, aber jo naam hai is waqt un sabhi ke liye geet chalane ja raha hu yahan se. और पहला है सत्या जी, तम सदम सत्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए। एंजॉय यू आर एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर। और रणधीर बद्री का गाया हुआ एक नगमा मिड फॉर्मेट से टू स्टेप, सत्या जी के नाम, आई तम सदम।

रणधीर बद्री मेरे प्यारे सुन वालो, रणधीर बद्री कसम की कसम है कसम से, और हमको प्यार है सिर्फ तुमसे। ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुन वालो, इन्होंने अपने ही रंग और ढंग में फिर से गाए हैं, सजाए हैं, और बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ सेवा में आप सभी का हमने फिर पेश किया है। वहां नाम सदम मेरे प्यारे सुनने वालों, अमस्टरडम में भैया सुनील जी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, और हमेशा जब भी सुनील जी को मौका मिलता है सुनील जी, थैंक यू वेल आपके सपोर्ट के लिए, पावर के लिए। एंजॉय योर वीकेंड, और धमाकेदार सॉन्ग हमने तैयार करके रखा है स्टीफन धर्मपाल और आइवन, और वो भी आपके नाम करता हूं सुनील। आइटम से नाम

नाचे नाचे दी सोखा मेरे प्यारे सेनो वालों, स्टीफन धर्मपाल और आइवन घड़ी की तरफ मैं देखूं तो मेरे प्यारे सेनो वालों 5 मिनट बाकी हैं और वो भी सरे 10 बजने में, 5 मिनट 4 o'clock फन हाल ऑफ एलफ। एंड वी गान नार डेन हेल्डर, वहां से एप आए हैं इल्स रामदयाल जी भी प्रोग्राम से आनंद ले रहे हैं, तो इल्स जी को हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्यू वेल आपके एप के लिए। मोटी माला भोला सिंह जी, इनका गाया हुआ एक नगमा हमने तैयार करके रखा है और इसे हम नाम करेंगे इल्स जी के नाम। एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय यू आर, एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर और खास करके एंजॉय दिस सॉन्ग।

मोतीमाला भोला सिंह मेरे प्यारे सुन वालो, जिएंगे तेरे बिन कैसे जाना। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुन वालो, सेवा में जो हमने

अगले गीत मेरे प्यारे सुनने वालों मैं पेश करने जा रहा हूं हिरवाल्डो मरकरी जी और उनकी प्यारी सी बेटी शरीदा। आप तीनों के नाम दारिन स्वाख खनीत फाइनल वीकेंड लेकर रिलैक्स। हिरवाल्डो जी, मरकरी जी और शरीदा जी, एंजॉय योर वीकेंड। एक पुलिस तैयार सेट एक गीत जो फिर से सजाया गया है, बनाया गया है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे बर्दाश्त करेंगे। थैंक यू लिवेल आपके लिए एंजॉय।

ये पर्दा हटा दो, जरा अपना मुखरा दिखा दो। देखो हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर तो नहीं। हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई गैर तो नहीं। ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों। किस तरह से ये लोग सजाते हैं, बनाते हैं और अल्फाजे इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत लगता है सुनने में। दिस इज यू आर मेरे प्यारे सुनने वालों, जहां पर द फाइनेस्ट लोकल्स हर एक शनिवार रात्रि को प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर में आप तक पेश किया जाता है। वहां ही लमाओ अक्रॉस द ओशन मेरे प्यारे सुनने वालों, अटलांटिस नॉर्थ सी ट्वार्स दोर इंग्लैंड ट्वार्स दोर आयरलैंड एंड ऑन द अटलांटिस ओशियन ट्वार्स दोर न्यूयॉर्क और पता नहीं न्यू ऑर्लियंस जाकर पहुंचेंगे टेक्सस में। टेक्सस में वहां पर हमेशा मेरा साथ देते हैं जब भी ये लोग सुनते हैं, ऐप करते हैं, हमारे बहुत प्रिय होंगे हैं। तो अजय और सुनीता जी और तमाम हिती प्रेमियों जो वहां पर शामिल हैं, बहुत बहुत बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, एंगल्स तनी चाहिए बोले तो थैंक यू चून करने के लिए, क्योंकि आप पूरे वर्ष में देखेंगे तो चॉइस इतनी ज्यादा है। वारोपी का नाफ स्टेम एंड नकीशे फॉर उजाला रेडियो और खास करके हमारे प्रोग्राम या दंग बारबेनिक, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं। मैंने गीत को तैयार करके रखा है, आप सभी को वहां पर नाचना पड़ेगा क्योंकि तायरा जो सुनाने वाले हैं, सुनीता जी, अजय जी और जितने लोग भी वहां पर हैं, खमर फस्तान एंड एंजॉय दिस सॉन्ग एंड डांस विथ यू आर।

ब्यूटीफुल बैठक ब्लैंड बाय टीरा, मेरे प्यारे सुनने वालों, एकदम मजा आ गया। एनिक बैन सो ब्लाइ, मेरे प्यारे सुनने, बहुत खुश है हम कि हमारे जवान जवान जो कलाकार है हमारे देश का, हिंदी पॉप सीन में हमारे देश का जवान जवान कलाकार बैठक गान का इतना प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे कुनुनत, ऐसे दुनुत खुत, और इन सभी के कारण बैठक गान अभी जिंदा है और चल रहे हैं, और इसी तरह से बैठक गाना जो है हमारा जो है प्रिय, इसी तरह चलना चाहिए। एनिक विल दार फॉर ऑल द यंग आर्टिस्ट फ्रॉम नीदरलैंड नतुलन ओक पडांक। मेरे प्यारे सुनो लोग, कुछ देर तक त्रिनी पॉप सॉन्ग्स आप तक पेश करेंगे, और त्रिनी पॉप के सॉन्ग्स आपको सुनाते सुनाते हम बढ़ चलेंगे 11 बजे के ब्रेक की ओर। 11 बजे के बाद अलीमा सोल्स, तू जाने तो।

रफिक प्रसाद मेरे प्यारे सुनने वालों, और मैं आगे बढ़ूंगा ये प्रोग्राम को, और आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे सुनने वालों की ब्रस एफएस आज पहला एडिशन था डेनहाग शहर में, ये इवेंट सेंटर में। और अगर आज आपको मौका नहीं मिला जाने के लिए, प्रबीर मोड़ खान टिकटों के लिए www.brasafest.nl। मैं भी कल जाऊंगा क्योंकि आज मौका नहीं मिला, एक वफंदा खूब खान मारत इसमें नहीं खलुक्त। Maar morgen ga ik zeker. En het is morgen vanaf 2:00. Dopair, dobeje. Ratri me barabajetak. The best of the best.

हमारी जो हिंदी पॉप सीन का जो फरमासी से बेंचेस है वो सब शामिल होंगे। आज भी बहुत सारे आए हैं। लॉयड साल लाइफ आउटस्टैंडिंग परसोर्ख और शायद मैं भी उनका साथ दूंगा। एक वेट नहीं तो होता लमाल इन खरी गलत इस मोर्ख। फिलहाल तो हम जाएंगे, एंजॉय करेंगे और खाना खाएंगे, नाचेंगे, म्यूजिक का एंजॉय हम करेंगे भी, लोगों से मिलेंगे और जिसको अतिशीन फ्लिक्टिंग जो ब्रासा करना चाहेंगे अम्ब्रासा इज ऑलवेज नेचुरली वेलकम। उजालास ब्रासा मिला फेस इंडोर समर एडिशन जिया इवेंट सेंटर डन हाग में मेरे प्यारे सुनने वालों। आखिरी गीत इस घंटे का, उसके बाद में ब्रेक होंगे 11 बजे का और ब्रेक के बाद अली मसूल स्टिल मिडनाइट।

या तेरे लिए इस दुनिया में आए और तेरा साथ निभाएंगे। द किंग ऑफ हिंदी पॉप मेरे प्यारे सुनने वालों, उमर वागित हुसैन की आवाज। घड़ी की तरफ मैं देखूं तो 12 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, 11 बजकर रात्रि में 12 बजे तक आपका साथ हम देंगे। और इस आखिरी घंटे में मेरे प्यारे सुनने वालों, किसी ने ऐप नहीं किया है और जितनी ऐपर्स था उन सभी के नाम से गीत चला चुके हैं। मौका दिया जा रहा है ये कानों स्टेज वाले पर एन दंसाल इक्वल नीचे फुए दराए मदद साल वेलन सोल सेंग 020-363-0808। जब उमर हमने पेश किया है तो चलो निजाम को भी पेश करता हूँ। उनका एक नगमा हियर ऑन यू आर सैटरडे नाइट फीवर में

निसाम वागित हुसैन, मेरे प्यारे सुनने वालों, खूबसूरत गीत जो इन्होंने गाकर पेश किया है, एंड इट इज फारिस बरसाती, मेरे प्यारे सुनने वालों, इश्क सूफियाना। रिमेंबर दिस इज यू आर सैदरी 93.3 Enjoy your weekend, mere pyare sunalo. Enjoy your Shaniwar. Tu cha.

सागर मालिक और निशा मडारन मेरे प्यारे सुन वालों, अब नाम मोहब्बत है, खूबसूरत गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं। टू ई फंतासिस संगर्स संगरेस सागर मालिक जी और निशा मडारन, ओनली हियर ऑन यू आर मेरे प्यारे सुन वालों, भरपूर आप एंजॉय करें सैटरडे नाइट फीवर और लोकल का ये प्रोग्राम मेरे प्यारे सुन वालों, पांच घंटे का। आज देखो ना, हम आन पड़े हैं इस प्रोग्राम का आखिरी आधे घंटे, और कुछ नगमाएं हैं मेरे प्यारे सुन वालों, दिलचस्प नगमाएं हैं जो आपकी सेवा में पेश करना चाहूंगा, जैसे कि सुबी का ये नगमा कि तेरा फितूर एकदम फर्स ऑन द पर्स मेरे प्यारे सुन फॉर्म में खिस्र आउटकम हियर ऑन यू आर फंडा।

tira futur me na pierre se nono orieta subi ekdem vers van de pers me na pierre se nono gisteren uitgekomen aaj you are per amne aap tak pesh kiya hai मैं देखता हूँ प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और अभी अभी आए हैं वो भी बरासा फेस से एंड दन माखत हम दचे ना बरासा फेस पे खवेस और अब घर आए हैं रोहनी कल्लू जी एट रोटरडाम दंकीवेल आप कैब के लिए एंड खूब दचे खनोत है फन बरासा फेस शेखर कुमार और अरुणा का गाया हुआ एक नगमा हमने तैयार करके रखा है तो रोहनी कल्लू जी आपके नाम करता हूं

धीरे सिवाना किसी का बनूंगा। ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनवालों, और सागर मालिक जी ने वो ब्यूटीफुल सॉन्ग फिर से गाए हैं, सजाए हैं और आप तक हमने पेश किया है बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ। हियर ऑन यू आर सैटरडे नाइट फीवर में अगले गीत जो हमने तैयार करके रखा है मेरे प्यारे सुनवालों, मनोज मढ़ाई और रीना जी एस अवार्ड प्रख्त बखलाइत डोर माइस्ट्रो ज्वाला पेश करता हूं नगमा।

पास है मेरे प्यारे सुनने वालों, खूबसूरत गीत सेवा में जो पेश किया गया है अवखाना सागर मालिक। मेरे प्यारे सुनने वालों, शिखर कुमार ओ मेरी महबूब,

0: शेखर कुमार, मेरे प्यारे सुनने वालों, शेखर कुमार की आवाज।
1: This evil game is on check. It's on the look. Roll it. Okay.
0: मेरे प्यारे सुनो, आखिरी गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ और इस आखिरी गीत को हम पेश करेंगे स्कीफनिंग शहर में जो रहते हैं भैया लक्ष्मण जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए। शुभ रात्रि, एंजॉय योर वीकेंड। आखिरी ये गीत मैं आपके नाम करता हूँ, विशाल क्रिल इनका गाया हुआ। मेरे प्यारे सुनो लो, जिस तरह से आज ये प्रोग्राम सजाया गया है, बनाया गया है, उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी ने भरपूर भी पसंद की है। हम आप सभी से फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द। तो आज्ञा चाहता हूँ, रहा फूल तो फिर खिलेंगे और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज़। टेक केयर और रिमेम्बर, आई लव यू ऑल।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।